चारुलोक महाकाव्य बर्किमार सुन्ना सुनैना कार्यक्रम 2083 जानकी गाउँपालिकामा यह असोज 28 गते से 30 गते सम्म बर्किमार सुन्ना सुनैना कार्यक्रम हुइना हुइलको से सक्कु जहन सहभागिता के लाग हार्दिक अर्जी करती। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मुख्य वाचक चन्द्र प्रसाद चौधरी सखिया नाथ मुंगरहुआ नाथ झुमरा नाथ ओ स्थानीय कला प्रदर्शनी हुई ना बा कार्यक्रम हुई ना स्थान महेंद्र शिशु माध्यमिक विद्यालय धर्मापुर समय संध्या 6 बजे से आयोजक जानकी गाउँपालिका दुर्गौली कैलाली

0: ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 को हार्दिक निमन्त्रणा। आदरणीय सज्जन वृन्द, वैदिक धर्म संस्कृति वेदाध्ययन तथा आध्यात्मिक चिन्तन प्रति श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ऋषिकवेद पारायण महायज्ञको पावन अवसरमा गरिमामय उपस्थिति तथा सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 कार्तिक 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म। आयोजक श्री मल्लिका विद्यापीठ, गुरूकुल टिकापुर, कैलाली।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: कबू कापी रहीठ कबू पेन्सिल रहीठ कबू झोले फटाका आजिठ का कना हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोले फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: स्वदेशकानपछि अब सुनौ आज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमको रूपरेखा। अहिले 7:30 बजे संवाद, 8 बजे राष्ट्रभक्तिका गीतहरू, 9 बजे थारू भाषामा खोज खबर, 10 बजे लोकदोहोरी गीतहरू, 11 बजे आधुनिक गीतहरू, 12 बजे मध्याह खबर, 12:20 बजे लोकगीतहरू, 1 बजे अपने एकलग, 1:40 बजे नेपाली थारू मिक्स गीतहरू, 3:30 बजे सुपरहिट थारू गीतहरू, 4:30 बजे थारू नेपाली मिक्स गीतहरू, 5 बजे थारू भाषामा खोज खबर, 5:30 बजे नेपाली थारू गीतहरू, 6 बजे खोज खबर, 6:40 बजे महिला बोल्छिन्, 7 बजे कर्णालीका भाका, 7:30 बजे साझा खबर, 8:10 बजे पोषण संवाद, 8:45 बजे बीबीसी नेपाली सेवा र रात्रि 9:55 बजेको खबर संक्षेपसँगै रात्रि 10 बजे आजको हाम्रो सम्पूर्ण प्रसारण सेवा पूरा हुनेछ। हवस् त आजलाई आजको दिन यति नै। भोलि बिहान आज झैं विभिन्न प्रस्तुति लिएर आउनेछौ। सामुदायिक रेडियो टीका प्रथम सुन्दै गर्नुहोला। प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म ईश्वर साउत पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईँको आजको दिन शुभ होस्।
1: छिच्छी, कस्तो गनाएको! इनका सन्तानले टोइलेट गनाएरै मार्ने भए,
2: फेरि छिमेकीको गाली पाइने भयो। के गर्ने होला, घरमा पुरुष पनि छैनन्।
3: ए दिदी पनि कति डराउनु भएको, कोही चाहिँदैन, फोन गरेपछि तुरन्तै सेवा उपलब्ध गराउने आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा छँदैछ नि।
1: कता छ त त्यो?
3: जता भए पनि फोन गर्नुहोस् न, तुरन्त आइहाल्छ नि।
1: फोन नम्बर कति हो भाइ?
3: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाको सम्पर्क नम्बर 97620203000 हो। अर्को पनि छ 98 65 69 20 26।
4: तपाईँको पनि टिकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, सत्ती, राजापुर, गेरुवा र लम्कीमा सेफ्टी ट्याङ्की, गोबर ग्यास र रिङवाला टोयलेट सरसफाई गर्नु परेमा आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला। सञ्चालक शेरबहादुर थारू। सम्पर्क नम्बर 97620203000 र 98 656 92 026।
5: दाई बेड्डो भूख लाग्छ, खाजा बाँकी नै। ए काकी फे आइल बाटी, राम राम काकी।
6: राम राम हो नानी, मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारे हो स्याकल बाजे। आप भलि भुवास कर दिए परल है, समय में भुवास कर दे से आपन जिम्मेवारी फे वरिना, और जनक बात फे सुननी पर्ना।
7: आ दिदी फे ऊ बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह, छुट्टी में भुआस कर देखा मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता, फिर डोरे नीच हटू दीदी, मई चाहे बाल विवाह कर नीच हटू, ये बाल विवाह निकरण दीदी।
8: शारीरिक मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कह देना से दाई वो बच्चा दुनू के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत, उ हिंसा के शिकार बन सकत, उही विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई सकती, उ रोजगार फिर नहीं पाए, ओ गरीबी में बांच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई, असिन करैल से 3 वर्ष सम कैद ओ 30,000 रूपया सम जरिवाना हुई सकत, ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता।
4: टीकापुर नगरपालिका ओडा नम्बर 3 से देगिलक जनहितमा जारी सन्देश।
8: थारू लोक महाकाव्य बल्किमार सुन्ना सुनैना कार्यक्रम 2083। जानकी गाउँपालिका म यह असोज 28 गते से 30 गते सम बर्किमार सुन्ना सुनैना।
9: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
10: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
11: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला, बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र, प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन

बर्किमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमारक व्याख्या सहित गायन मनैनाक जिन्दगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक हो चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौवल सुनी देठ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविका मनेक छ वसाक बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरुन चढाइक लाग भक्कर गौरी उन लै जाइटल ओह ब्यालामा सुस्तरमा का नेतृत्वमा गैल कौरा हुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर्क लै जाइ लग्ल बर्किमार बटकोही बाचक हुँ

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी ही जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था काकना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा टना भुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलतमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
1: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाढ़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417
6: टीकापुर नगरपालिका को सूचना नगरपालिका भित्र संचालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौं
7: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौं
6: यस टीकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौं
7: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि यथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं र गराउं टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार क व्याख्या सहित का गायन मनैन जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हो क्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो क्र प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौ झुनी देठ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविकामा निकट वसाक बैरात नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चढाइक लाग भक्खर गौरी ओर्लै जाइटल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्वमा गई कौरा हुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर्ग लैजाइ लग्ल बर्कीमार बटकोही बाचक हुँ

कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंगडौवा, ओकछुम्रा नाच। कार्यक्रम हुइना मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। नवरात्रा के दूसरा दिन चंद्रघंटा देवी के विशेष पूजा आराधना करती टीकापुर बाजार में अनुगमन चलती। एक दिन 30,000 बराबर के म्याड नागल सामग्री बरामद करके नष्ट। नेपाली कांग्रेस देउवा पक्ष के कैलाली क्षेत्र नंबर 1 के क्षेत्रीय सभापति में धनंजय निमाल निर्वाचित। जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 में सुवर्णपुर में खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति अभिमुखीकरण हो। विराटनगर में आज से मुख्यमंत्री सम्मेलन। प्रदेश के अधिकार में साझा धारणा बनाने प्रयास। टीकापुर नगरपालिका के बजार अनुगमन हे तीव्रता पारगिलवा। नगरपालिका से सोमवार 2 टोली बना के टीकापुर बजार ओ वार्ड नंबर 6 और 7 के पसल के अनुगमन करगिलवा। टीकापुर में पसल उकरण के अनुगमन करबेर करीब 20,000 रूपया बराबर के हो। अखाद्य सामग्री बरामद करके नष्ट करल टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वड़ा सचिव चक्रबहादुर रावल बटोले और टोली के नेतृत्व करती नगरपालिका के आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रंजू आचार्य। व्यवसाय उकरण के सुधार हुई तिरलको लव व्यवसाय उकरण व्यापार व्यवसाय संचालन के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त समेत करलको 10,000 बराबर के सामग्री बरामद करके नष्ट करलक बटोले बाटे। नगरपालिका से बाजार में अनुगमन करलक उपभोक्ता उकरण से खुशी व्यक्त करल बाटे। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 समेत 18 उपभोक्ता समेत अमर रिमाल से वस्तु के गुणस्तर कायम करना वस्तु बिक्री नियंत्रण करना नगरपालिका से नियंत्रण अनुगमन करे पर्नामा प्रतिक्रिया देले बाटे। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 सुवर्णपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति के पदाधिकारी हुकरण अभिमुखीकरण करगिलवा। अभिमुखीकरण कार्यक्रम में खानेपानी समेत संचालन के लागत खर्चा विवरण सदस्य शुल्क संचालन करबेर आई पर्ना चुनौती गुनासा व्यवस्थापन लगायत के बारे में छलफल करगिलवा। कार्यक्रम में सहजीकरण करती खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार आयोजना के पालिका में सहयोग टोली के सुशासन तथा संस्थागत विज्ञ गणेश उपाध्याय से तमाम शीर्षक में हुई उपभोक्ता समिति के खर्च विवरण के बारे में जानकारी करेल बाटे। खानेपानी के निर्माण कार्य समेत संचालन में समस्या आईसेकना रलकोट से एक जिम्मेवारी उपभोक्ता समिति लेह पर्ना खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना में पालिका के सहयोगी टोली प्रमुख जयराज पन्ता बटोले बाटे। खानेपानी कार्यक्रम संचालन करबेर गांव बरघरिया उकरण के सक्रियता में आवश्यक रलक ओर से वहां उकरण संगे गांव में छलफल चलैना जरूरी रलक। खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना पालिका सहयोग टोली के सामाजिक विज्ञ कृष्ण पन्त बटोले बाटे। खानेपानी सरसफाई संचालन समिति के सदस्य टंका बलादी से समेत वर्षों पहले से लेके खानेपानी निर्माण के काम हुई रलक रलसे फेन समय में संचालन में नई ऐलक ओर से उपभोक्ता उकरा गुनासो करते रलक बताइगिलवा। छलफल कार्यक्रम में आगामी दिन में योजना निर्माण हुईना हो समिति से कार्तिक महीना से लेके सक्रियता होके खानेपानी के काम करना योजना बनाइल बटवागिलवा। जानकी गांवपालिका से दिवंगत व्यक्ति हुकरण के पार्थिव शरीर है अंतिम संस्कार के लग घटवासम पुगैना सहजीकरण करने उद्देश्य से महाप्रस्थान यान लानगिलवा। मृत्यु पश्चात दिवंगत आत्मा के पार्थिव शरीर है सम्मानजनक रूप में अंतिम संस्कार स्थल सम पुगैना सहज हुए कहना उद्देश्य लेके गांवपालिका से यान भित्राइले महाप्रस्थान यान के आपूर्ति करना कंपनी हुकरा गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी हे यान के चाबी हस्तांतरण करगिल बा चाबी हस्तांतरण कार्यक्रम में उपाध्यक्ष लालमती कठरिया कार्यपालिका सदस्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोत्सना भत्ता जोशी लगायत के उपस्थिति रहल रह। खोज खबर में आए घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो घर में सक न सक सब काम कर काम कर विदेश जानू के नगर्नी के जन्म पड़े जस्ते
2: जो राम पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह करे आपको वर्तमान भविष्य दुबई अन्योल में पारी 20 वर्ष मुनि हमी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालय द्वारा जनहित में जारी सन्देश।
4: टीकापुर नगरपालिका को आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
0: नवरात्रा के तेसरा दिन आज दशैं घर वा पूजा कोठा में 9 दुर्गा मध्य की तेसरा समेत चन्द्रघण्टा देवी की विधिपूर्वक पूजा आराधना करते बाटे 9 दुर्गा मध्य की तेसरा देवी चन्द्रघण्टा के हाथ में चन्द्रमा के आकार आधार में रलक घंटा लेना रलक ओर से ई चन्द्रघण्टा समेत नाव रहना गैलक बटागिल पौराणिक एवं धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिब देवी के समेत पूजा आराधना से शक्ति प्राप्ति हुन रलकोर्से। नवरात्र के अवसर में विशेष पूजा आराधना गर्न करगिल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठ के सेवा निवृत्त प्राध्यापक टोयराज नेपाल जानकारी देले बाटै मर्कान्दे पुराण चन्द्रघण्टा एस्मा अष्टक अर्थात चन्द्र माकेश जेकर समेत घण्टामा रलक ओकर नाउ चन्द्रघण्टा होकना उल्लेख करगिल बा चन्द्रघण्टा देवी के शिरमा समेत अर्धचन्द्रमा के साथे घण्टा फे समेत धारण गर्न रलक ओरसे नाउ रहन पुगल बतागिल बा चन्द्रघण्टा देवी के समेत स्वरूप पियर समेत वर्णन करगिल बा ओसिके देवी अत्याचारी दानवी स्वरूप हुक्रान नाश करना चन्द्रघण्टा देवी के पूजा आराधना के दिन मणिपुर चक्रहे समेत ध्यान दैगिलवा चन्द्रघण्टा देवी के स्वरूप में ध्यान करबेर अनेकौं शक्ति प्राप्त हुन विश्वास करगिलवा। नेपाली कांग्रेस के 15 नियमित महाधिवेशन अन्तर्गत कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 के प्रदेश क ख ओ समेत क्षेत्रीय अधिवेशन ओराइलवा अधिवेशन से क्षेत्रीय सभापतिमा धनंजय रिमाल चयन करगिलवा हस्तगत सचिवमा छत्र मल्ला लक्ष्मीराम चौधरी सहसचिवमा हंस राज रावल ओ धर्म कुमारी समेत चन्द साहफे निर्विरोध निर्वाचित हुई बाटै एकसाथे औरे सदस्य हुक्राफे निर्विरोध निर्वाचित हुई निर्वाचन समिति से जनाइलवा। क्षेत्रीय संयोजक भुवनेश्वर अधिकारी के अध्यक्षतामा हुई कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस के नेता तथा पूर्व मन्त्री रामजनाम चौधरी पार्टीका आधिकारिकता सर्वोच्चमा समेत विचाराधीन रहलक बटोइटी पार्टी फुटैनाके जिम्मा गगन थापा के रहल बटोइले बाटै नेता चौधरी से पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा उप तमाम आरोप समेत लगाके पार्टी के विशेष महाधिवेशन करके निर्वाचनमा जाइबेर गगन थापा नेतृत्व हे जनता से अस्वीकार करलक बटोइले बाटै और पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस के नेता डाक्टर रणबहादुर रावल पार्टी समेत कब्जा गर्न नाउँमा अभियान हे समेत डग्रहमा छुटाके 2 महिना फे समेत असरा लागे नै सेक्नाउ पार्टी विभाजन के ओर गैलक बटोइले बाटै उहाँ समेत मरणसम्म हुईल अभी आन हे अभिभावक हे अपमान करके पार्टी फुटैना काम करलक गलत हुईल बटोई थी अपना होकर सबको जहान के सम्मान करना रले को से नियमित महाधिवेशन में थगेलक बटोईले बाट पूर्व सांसद गंगा बहादुर कुवार ई बेला नेपाली कांग्रेस दुई चिरामा विभाजन रलक स्मरण करी थी एक व्यक्ति सुघोषित सभापति हुईलक हस्ताक्षर संकलन करके पार्टी भीतर के बुढ़ाइल नेता युवा हुकन बीच द्वंद्व निम्त्याल बटोईले बाट वहां आगे 2015 साल में फिर अस्त खेल हुईलक स्मरण करती ऐसी काम से सचेत रहना बटोईले बाट महासमिति सदस्य नवराज रावल अपना हुकरण एकता के पक्ष में रहल बटोई थी विशेष महाधिवेशन पक्षधार हुकरा समेत मनोमानी के कारण कांग्रेस दुई भाग में विभाजन हुईलक बटोईले बाट वहां अपना उग्र जनता के समस्या समाधान के साथ ही देती ऐलक आगे बढ़े पर्ना विश्वास रलक बटोईले बाट महासमिति सदस्य धर्मराज न्यौपा ने आफ्नो पार्टी की नेता हुकरण मान मर्दन करके विशेष महाधिवेशन में हुईना दुखदायी समेत रलक बटोई थी अपना उग्र नियमित महाधिवेशन के पक्ष में समेत थर्यालो संगठित हुईल बटोईले बाट और नेता पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि वीरबहादुर हमाल कांग्रेस के अवस्था कमजोर बनेना प्रयास समेत रलक ओर्से रीतिथिति बिगड़ना काम रलक ओर्से अब एक ढिक्का होके निष्ठावान एक ठाउँमा समेत अभियान आवश्यक रहल बटोईले बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा जानकी गाउँपालिका के निवर्तमान उपाध्यक्ष उमा महतो से ऐन दिनमा नेतृत्व से विभाजित रलक ओर्से कांग्रेस हे वहां उखरा एकैठो मालामा समेटना अनुरोध करबाट कैलाली के क्षेत्र नम्बर एक प्रदेश क के सभापति विधिराम चौधरी टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नागाजी नेपाली कांग्रेस के टीकापुर नगर सभापति झपत बुढ़ा जानकी गांवपालिका के सभापति गोविंद बिस्त जोशीपुर गांवपालिका के सभापति विश्वनाथ चौधरी से शुभकामना धरलह क्षेत्रीय सचिव धनंजय रिमाल से संचालन करलत कार्यक्रम में स्वागत प्रदेश ख के संयोजक मोतीराम भंडारी करल रहें बड़ा दशैं लगघायल संगे काठमाडौं उपत्यका मनसे आपन घर लौटना हुकरन के यात्रा हुकरन के चाप बढ़ती रहल बा दशैं मनैना राजधानीमा समेत अध्ययनरत रोजगारी तथा तमाम पेशा व्यवसायमा संलग्न मनै हुकरा धमाधम आपन घर लौटना कार्यक्रम फिटिबा काठमाडौं उपत्यकामा समेत तमाम नाकासे देश के तमाम जिल्ला जैना लम्मा तथा छोट दूरीक सार्वजनिक यातायातमा यात्रु हुकरन के चहल पहल बढ़लबा दशैंमा परिवार तथा आफन्त हुकरन संगे भेटघाट करके चाड पर्व मनैना यात्रु हुकरा गांव लौटना क्रम बढ़ल बटवागिलबा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायक उपरीक्षक रविन्द्र खनाल से दशैं मनैनकला काठमाडौं के तमाम नाका हुई थी सोमवार बिहाने मनसे समेत 24 घंटा सम 56,809 यात्रु बाहर आसेकल बटोईले बाट कोशी प्रदेश के राजधानी विराटनगर में आज से मुख्यमंत्री सम्मेलन शुरू हुई थी संघीयता कार्यान्वयन से लेके देगिल संवैधानिक तथा प्रशासनिक जटिलता के समाधान करती प्रदेश के अधिकार सुनिश्चित करना साझा धारणा बनाईना उद्देश्य लेके सम्मेलन आयोजना करगिले खो कोशी प्रदेश सरकार के आयोजना करलक सम्मेलन में सहभागी हुईना छ प्रदेश के मुख्यमंत्री विराटनगर में एक ठाउँमा समेत जुटल बाट मुख्यमंत्री सुरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री भरसमेत जैनाथ टुंगो नैलागलक सुरपश्चिम प्रदेश के प्रमुख सचिव सम्मेलन में सहभागी हुईना भर पुगल बटागिल वा सम्मेलन में सहभागी हुईना मधेश के समेत मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव बागमती के मुख्यमंत्री किरण थापामगर गंडकी के मुख्यमंत्री सुरेन्द्र राज पांडे लुम्बिनी के मुख्यमंत्री चैक नारायण आचार्य कर्णाली के मुख्यमंत्री मंगल बहादुर शाही सोमवार विराटनगर पुगसेकलक बटागिल वा खोजखरमा एक गरी फेन्से विश्राम विश्राम पाछ फेर्से बी सुन्थेर बी सामुदायिक रेडियो टिगापुर एफएम
6: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाइम
6: उहाँ आफ्न अनुहार बिगर्थे घर से बाहर नै निकर्थ्यो।
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू तब तुम अब ही जाए।
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600।

0: नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: विश्राम पछि फेर से स्वागत बा। सरकार से तमाम क्षेत्र संगे संबंधित 40 मेयर के तथ्यांक संकलन के काम आगे बढ़ाएल बा। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय से यह आगे शुरू हुईलक, पूरा नहीं हुईलक और हाल मकेल समेत शुरू कर सकलक। सहित के 3.5 दर्जन विषयों समेत क्षेत्र महासमेत तथ्यांक संकलन हुईतिरहाल जना गेल बा। नीति योजना निर्माण में महत्वपूर्ण मानजिना असीन तथ्यांक संकलन फिर लग समेत कार्यालय से आपन सबको विषयगत समेत शाखा और माठट के सक्रियता समेत जना सकल बा। कार्यालय से सार्वजनिक करलक मार्गदर्शन अनुसार तथ्यांक संकलन के कार्यक्रम अंतर्गत गणक सर्वेक्षण अध्ययन और नियमित समेत प्रकृति के काम हुई रलक बता गल बा। मार्गदर्शन ओर से अब राष्ट्रीय आर्थिक गणना 2082, राष्ट्रीय औद्योगिक गणना 2083 और राष्ट्रीय जनगणना 2088 के लग काम हुई रहल बा। जेकर मध्य चालू आर्थिक वर्ष में गणना के समेत तथ्यांग प्रशोधन विश्लेषण तथा नतीजा प्रकाशन के काम हुई रहल बा। कार्यालय से आगे 9 देशभर के समेत मेयर के एकर आवश्यक तथ्यांक संकलन कर सकल बा। उसका औद्योगिक सर्वेक्षण के लग सामग्री निर्माण तथा तथ्यांक संकलन करना कार्यसूची में फे चालू आर्थिक वर्ष में रहल बा। उसक गणना जनगणना के लग दस्तावेज के लग तैयारी के काम फे यह वर्ष से शुरू कर गिल बा। सर्वेक्षण अंतर्गत 7 मेयर के आगे बढ़ाएल बा। कल से जेकर अंतर्गत आंतरिक पर्यटन सर्वेक्षण मन से प्राप्त प्रदेश स्तरीय नतीजा फे सार्वजनिक करना कार्यक्रम रहल बा। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अंतर्गत के ओमान में समेत हुई रलक ओडीआई श्रृंखला के अपन दोसरा खेल नेपाल आज ओमान संग खेलने बा। अल अमेरत ग्राउंड मिनिस्ट्री रूप में समेत एकमा होना खेल में नेपाली समय अनुसार बिहान के 11:15 बजे से शुरू होना कहल बा। नेपाल से अतवार के हुई पहल खेल में कैनाडा है पराजित करलक हो। ऐसी खेल में नेपाल के समेत बैटर रोहित पौडेल के शतक बना गिल रहा। यह आगे शुक्रवार के हुई खेल में ओमान से फिर कैनेडा है पराजित करल रहा। ओमान की जीत पाछे नेपाल के शीर्ष 4 में पड़ना संभावना ओरेल से फिर नेपाल के समेत ध्यान अब समेत ओडीआई स्टाटस बचैना और समेत रहल बता गिल बा। लीग 2 अंक तालिका में नेपाल 33 खेल मन से 26 अंक सहित 6 स्थान में थरहलबा। कल से कैनेडा 34 खेल मन से 25 अंक सहित 7 स्थान में रहलबा। ओमान 29 खेल में 33 अंक बाकल से नेपाल शीर्ष 4 में पर्न संभावना। ओरायल संगे एक दिवसीय विश्वकप छनौट के यात्रा तय करना प्लेअप खेले पर्न रहलबा। प्लेअप में नेपाल संगे नामेबिया कैनेडा और यूएफए रहलबा। लीग 2 में भर समेत नेपाल अब 5 वा समेत 6 मध्य एक स्थान में रहिए समेत टुंग्याई सेकना रहलबा। ओडीआई के मान्यता जोगाइन के बारे में आईसीसी में समेत स्पष्ट प्रावधान आशकल नहीं हो। 6 स्थान में रलक में सेफ समेत लैंडिंग हुईना आकलन करल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। नवरात्र के तेसरा दिन चंद्रघंटा देवी के विशेष पूजा आराधना करती। टीकापुर बाजार अनुगमन चलती एक दिन 30,000 बराबर के म्याट नागल सामग्री बरामद करके नष्ट। नेपाली कांग्रेस देउवा पक्ष से कैलाली क्षेत्र नंबर 1 के क्षेत्र सभापति में धनंजय रिमाल निर्वाचित। जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 सुवर्णापुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति है अभिमुखीकरण। उपराटनगर में आज से मुख्यमंत्री सम्मेलन प्रदेश के अधिकार साझा धारणा बनाइना प्रयास। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुनासे खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनतिर विराम।
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ

0: बर्कीमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्कीमार गैना कार्यक्रम मार्ग गायक होकर चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक होकर प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान के पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकर लौवल सुनी देथ सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविका में निकट वर्षा का बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढ़ाईक्लाक भक्खर गौरी ओर ले जाय डल ओह बेलामा सुशर्मा का नेतृत्व में गैल कौराहों का नक्शेना होकर सक्कु गैया होकर खेदर का ले जाय लगल बर्कीमार बटको ही बाचक हुक्र सोम देमन दौरा हो शेखर दही कार्यक्रम को थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच लठौवा नाच मुंगड़ौवा ओक झुमरा नाच कार्यक्रम हुइना मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली
1: दमकल बिग्रेको सूचना टिकापुर नगरपालिकाको दमकल बिग्रेर मर्मतको लागि धनगढ़ी लगिएको र मर्मत भएर नआउँदासम्म दमकलका सेवाहरू प्रदान गर्न टिकापुर नगरपालिका असक्षम रहेको सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा जानकारी गराउँदछौ टिकापुर नगरपालिका
2: जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलालीको 9 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना साना किसानका लागि लगानी ल्याउँछौ सुनौलो बिहानी आउँदै गरेको बडा दशैं शुभ दीपावली नेपाल सम्बत एवं छठ पर्वको अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेयरधनी शुभचिन्तक पत्रकार समाजसेवी एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यही मिति 2083 साल कार्तिक 8 गते आइतबारका दिन टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा हुन गइरहेको श्री जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 9 वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौ स्थान टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहाल समय बिहान 10 बजेदेखि आयोजक जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टिकापुर कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 091-560-641 मोबाइल नम्बर 98-432-86-713

0: होंडा सँगै यो दशैंमा आशाको शुरुआत गरौं। स्क्राच कुपन मार्फत 1,00,000 सम्म जित्ने मौका। चुज एनी वन स्किम अन्तर्गत थप रु 10,000 सम्मको स्क्राच कुपन, 7 वर्षसम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्षसम्म एएमसी र होंडा छ साथ साथ अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होंडा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइम, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाइम।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
4: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नम्बर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी छ। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटिए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
2: टीकापुर को विकास का लागी के गर्दैछ नगरपालिका
3: नगर विकास का लागी नगरवासी को दायित्व के हुनु पर्छ
4: नगर विकासमा नागरिकको सहभागिता कसरी बढाउने र नगरपालिकाको काम कारबाही र सेवा प्रभाव बारे जानकारी दिने कार्यक्रम हाम्रो टिकापुर।
2: टिकापुर नगर कार्यपालिकाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको उत्पादन कार्यक्रम हाम्रो टिकापुर हरेक साताको बिहिबार बिहान 7:30 बजे र पुनः प्रसारण
5: बिहिबार दिउँसो 3 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: आई लव यू टू। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।
2: हिन्दू भगवान के महान पर्व बर्खा दशैं ओ शुभ दीपावली 2083 साल के पावन अवसर में सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दादू भैया ओ दीदी बहिया हुकनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती रगैया झोला उद्योग में तमान मेरके झोला सुपथ मूल्य में पा जाएत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग लगेज बैग फाइल बैग लगायत के तमान डिजाइन के बैग अर्डर करल अनुसार बना जाएत ओ पुरान बिगड़ल झोला मरम्मत कर जाएत एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: रगैया झोला उद्योग मुनवा रोड टीकापुर कैलाली संचालक राम प्रसाद चौधरी।
4: शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टीकापुरको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना। शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई यही असोज 10 गतेदेखि 25 गतेसम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सामुदायिक वनका सम्पूर्ण सदस्यहरूले असोज 25 गते भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढा, शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टीकापुर 2 राजीपुर कैलाली।
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हुक्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हुक्र प्रकृति का रचना कत्रा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौव जुनी देठ सक्कु प्राणी हुक्र आपन आपन जीविका मालिक छ वसाक बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाई क्लाक भक्खर गौरी ओर लैजाई डल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व म गैल कौराहु नक्सेना हुक्र सक्कु गैया हुक्र खेदर लैजाई लग्ल बर्कीमार बटकोही बाचक हुँ र

0: हिन्दूहरूको महान पर्व बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। साथै धीरु चाउमिन उद्योगमा चाउमिन सस आफ्नै उद्योगद्वारा उत्पादित गरिने भएकाले होटल रेस्टुरेन्ट र खाजाका लागि सम्पर्क गर्नुहोला। स्थान सिद्धार्थ होटल अगाडि टिकापुर कैलाली। संचालक नारायण तिमी सैना। सम्पर्क नम्बर 97 62 48 36 44।
1: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकी सबै काम गर्नुपर्छ, कस्तो गाह्रो हुन्छ। पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ, के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन। म त जन्मा परे जस्तै लाग्छ।
2: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
5: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
4: मिस्तरान वर्जन हो कना घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो न कबू कहूँ र घुम जाए तो था पाए।
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशिष्ट हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरगी उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।

बर्किमार बट को ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाथ जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बट को ही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक हों चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक हों प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौव जुनी देठ सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविकामा निकट वर्षा का बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढ़ाई क्लाक भक्खर गौरी ओर ले जाई डल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व में गैल कौरा होकर नक्सेना होकर सक्कु गैया होकर खेदर का ले जाई लगला बर्किमार बटकोही बाचन।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: ऋषिक वेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 को हार्दिक निमंत्रणा आदरणीय सज्जन वृन्द वैदिक धर्म संस्कृति वेदाध्ययन तथा आध्यात्मिक चिन्तन प्रति श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ऋषिकवेद पारायण महायज्ञको पावन अवसरमा गरिमामय उपस्थिति तथा सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 कार्तिक 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म आयोजक श्री मल्लिका विद्यापीठ गुरुकुल टीकापुर कैलाली
5: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय टीकापुर 4 बाङमारा प्रधान अध्यापक रघुनाथ उपाध्याय
6: कर्मचारी आवश्यकता महापार्वती मेडिकल तथा जोशीपुर पोलिक्लिनिक जोशीपुरमा अनुभवी कर्मचारीहरूको आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिन्छ आवश्यक पदहरू ल्याब टेक्निसियन अथवा ल्याब असिस्टेन्ट माग पद संख्या 1 फार्मेसी सहायक माग पद संख्या 1 एचए अथवा अहेब माग पद संख्या 1 सम्पर्क 9848637585 9815860464 महापार्वती मेडिकल तथा जोशीपुर पोलिक्लिनिक जोशीपुर कैलाली

बर्किमार बटको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनहर जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बटको ही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक हूं चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक हो प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौ जुनी देथ सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविका मनेको छ वसा का बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चढ़ाई क्लाक भक्कर गौरी ओर ले जाई डल ओह ब्याला सुशर्मा का नेतृत्व में गई कौराहों का नक्शेना होकर सक्कु गैया होकर खेदर का ले जाई लगला बर्किमार बटको ही

कर्मचारी आवश्यकता। महापार्वती मेडिकल तथा जोशीपुर पोलिक्लिनिक जोशीपुर में अनुभवी कर्मचारी को आवश्यकता पड़े हुआ इच्छुक तथा योग्य व्यक्ति संपर्क कर अनुरोध कर आवश्यक पदर लैब टेक्निशियन अथवा लैब असिस्टेन्ट माग पद संख्या एक फार्मेसी सहायक माग पद संख्या एक एचए अथवा अहेब माग पद संख्या एक संपर्क 9848637585 9815680464 महापार्वती मेडिकल तथा जोशीपुर पोलिक्लिनिक जोशीपुर कैलाली।

बर्कीमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाग जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हुक्र चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक हुक्र प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौवल झुनी देठ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविका मानेको छ वसाका बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरुन चढाइक्लाक भक्खर गौरी ओरलाई जाइटल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्वमा गैल कोराहुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर्क लैजाइ लग्ल बर्कीमार बटकोही बाचन

0: कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंगडौवा, ओक झुमरा नाच। कार्यक्रम होइना मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।
1: बढाएर सहित तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसर में संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक तथा देश विदेश में रहन् भएका नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि र उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। जीवन साइकल स्टोर टीकापुर में बाल बालिका देखि वृद्ध सम्म का लागि उपयुक्त विभिन्न डिजाइन का आकर्षक साइकल साइकिल का पार पूर्जा पाइन का साथ ही मरमर संभाल को सुविधा उपलब्ध छ। गुणस्तरीय सामान भर पर्दो सेवा र ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसैले साइकल किन्न होस् वा मर्मत गर्न एक पटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
2: संचालक राजेश कुमार चौधरी, जीवन साइकल स्टोर, ब्लक नम्बर 14, टीकापुर सुधार केन्द्रको लाइन, सम्पर्क नम्बर 9810

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संझे 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रेन स्वागत बा। खोज खबर से छपीलाल चौधरी राम राम। अब अपनी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुन्ती बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिका के बाल विकास शिक्षक को नगर अनुदान शिक्षक के तलब वृद्धि शिक्षक हुकर खुशी नवरात्र के तेसरा दिन चंद्रघंटा देवी के विशेष पूजा आराधना कैजैटी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक फिर से सरल कांग्रेस असहमति में अन्ना प्रयास जारी विराटनगर में आज से मुख्यमंत्री सम्मेलन और दूरसंचार प्राधिकरण के निर्देशन विपरीत इंटरनेट सेवा बेचुया 14 कंपनी है जरिमाना। थारू भाषा खोज खबर आप पूरा खबर टीकापुर नगरपालिका के कार्यपालिका बैठक आ बाल विकास शिक्षक और नगर अनुदान शिक्षक के तलब वृद्धि करल बा। कार्यपालिका के 71 बैठक संघीय सरकार के निर्णय अनुसार जो बाल विकास शिक्षक के तलब 24,000 उपलब्ध करना निर्णय करल बा। या कराघ नगर अनुदान शिक्षक के तलब में समेत वृद्धि करना निर्णय करल बा। नगर अनुदान शिक्षक के आधारभूत तह कक्षा 1 से 5 ईयाघ 8,000 पैतियाल में 28,000 कक्षा 6 से 8 के शिक्षक के 20,000 पैतियाल में 30,000 तलब पुगैल। कार्यपालिका सदस्य तथा वड़ा नंबर 8 के वड़ा अध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्ला जानकारी दिलवाट शिक्षक के तलब वृद्धि हुई पाछा शिक्षक हुकर खुशी हुई बाट। नगर अनुदान शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष सूर्य देवी भट्टराई लम्बा समय आपन हुकन के मांग स्थानीय सरकार पूरा करल में धन्यवाद दहल बाट। ठकुल्ला आज कार्यपालिका बैठक शिक्षक के तलब वृद्धि संग 18 ठो निर्णय करल बा। कार्यपालिका नगर दरेट स्वीकृत करल बा। बैठक से कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि मासिक रूप में दे जैना पेट्रोल खर्च आप मासिक तलब संग नगद खाता में पठैना निर्णय समेत करल बा। याकर संग 7 रसुआ बहिया पीड़ित के लाख प्रधानमंत्री राहत कोष में 5 लाख रकम जमा करना निर्णय करल ठकुल्ला बटैल बाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के बैठक आज केल 2 चो सारगिलबा। चालू आर्थिक वर्ष के बजेट ऊपर के छलफल बहिष्कार करना निर्णय में पुगल प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहमति में लान सरकार से प्रयास करल पाछ मंगलवार के लाख निर्धारित प्रदेश सभा बैठक फिर से सारगिलक हो। मंगलवार बिहान 9 बजे के लाख बलागिलक बैठक दोपहर 1 बजे सम सारगिल रह तभुन 1 बजे फे बैठक बैठक नहीं सकल पाछ संध्या 5 बजे के लाग निर्धारण कैगिल प्रदेश सभा सचिवालय के सूचना अधिकारी तारा कुमारी जोशी जानकारी दिलवाट। कांग्रेस बजेट ऊपर के छलफल में सहभागी नहीं हुई जनैती आयल रह। कांग्रेस संसदीय दल के नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह बजेट उपयुक्त नहीं हुईलक और सरकार प्रतिपक्षी संघ आवश्यक समन्वय नहीं करल कति छलफल में सहभागी नहीं हुई बटैल बाट। सरकार भर कांग्रेस समेत सहमति में आनके बजेट पारित करना प्रयास में बा। बजेट लेकर सत्तारूढ़ दल भीतर असंतुष्टि देखिल पाछ मंगलवार बिहान नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा के संसदीय दल के बैठक समेत बैठल रह। बैठक में बजेट के विवादित विषय छानबीन कर संसदीय समिति गठन करना ओ कार्तिक 15 गते भीतर पूरक बजेट लन्ना सहमति करल रह। विवादित विषय छानबीन मार्फत टुंगेती तत्काल के लाग बजेट पारित करना सत्तारूढ़ दल के तैयारी बा। संविधान जारी हुईलक 1 दशक पुग्ल सेफे संघीय सरकार कानून अधिकार और वित्तीय स्रोत हस्तांतरण नहीं कर बेर मुख्यमंत्री हुकर सिंहदरबार विरूद्ध एक मत देखिल बाट। संविधान जारी हुईल सेफे संघीय सरकार के नेतृत्व पटक पटक फेर गईल सेफे प्रदेश हेरना नजर भर नहीं फेर गिलक हुकन के निष्कर्ष बाटिन। विराटनगरमा मंगलबार से शुरू हुइलक अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी छ प्रदेशके मुख्यमन्त्री र संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार जो बाधक बनल बटैलोबाट केन्द्र सरकार अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याई करबेर प्रदेश सरकार हुक्र देखजैना कैक काम कर नैस्याकल अवस्थामा पुगल बटैलोबाट कोशी मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी ओ कर्णाली प्रदेशके मुख्यमन्त्री हुक्र प्रदेश अधिकार सम्पन्न नै बनाकर संघीयता सफल हुई नै सक्ना बटैलोबाट पथरी समायोजन संघीय निजामती सेवा ऐन शिक्षा ऐन ओ वन ऐन जसिन अत्यावश्यक कानून ह रोकके संघीय सरकार प्रदेश हाटद्वारा बहानके दौर नै सेक्ना बनैलक मुख्यमन्त्री हुकनके गुनासो बाटिन। सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमके मुख्यमन्त्री खगराज भट्टभर सहभागी नै हुइट प्रदेशके बजेट विवादके कारण उहाँ नै अइल। सुदूरपश्चिमसे प्रदेशके प्रमुख सचिव सहभागीबाट बुधबारसम्म चल्ना मुख्यमन्त्री सम्मेलन प्रदेश भागल साझा समस्या वित्तीय संघीयता कानूनी अडचन ओ अन्तर प्रदेश साझेदारीके विषय समेटके विराटनगर घोषणा पत्र जारी करुयाबा। सम्मेलनमा प्रदेशके मुख्यमन्त्री प्रमुख सचिव योजना आयोगके प्रमुख न्यायाधिवक्ता समेत सहभागीबाट खोज खबरमा दस्यासँग बाली भित्रैना किसान के चटारो लगायत के समाचार पलिबा सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछु भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
2: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
5: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
6: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
5: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
6: ईसीजी सेवा
5: डिजिटल एक्सरे सेवा
6: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
5: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-73-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
7: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। सुन्नुहोस् न यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
0: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
7: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
0: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
7: ल अरूलाई पनि भनौँ है।
0: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
6: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाइ हाम्रो जिम्मेवारी।
0: सिर्जना सुन चाँदी पसल, मलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
8: थाल भाषा खोज खबरमा फेरसे स्वागत बा। नेपाली हुकनके बर्का चाड बड़ा दशै लग्घ आइलसँग यहाँके किसान भर धान लगायतके बाली नाली भित्रैनामा व्यस्त रहलबाट नेपालके मुख्य बाली धान भित्रैना समयमा यी फ्यारा दशै शुरू हुइलसँग किसान यी बेला खेतबारीमा व्यस्त रह परल बाटिन। वर्ष दिनमा एक चोकेल ऐना दशैं मनाई घर लौटल हुँक्द समेत लौटल आफन्त हुँक्द समेत भेटघाटसँग खेतबारीमा बाली नाली उठैना काममा रमैती रहल पागिल बा। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणके निर्देशन ओ स्वीकृत मापदण्ड विपरीत इन्टरनेट सेवा बेच्न 14 ठो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी जनही 50,000 रूपियाँ जरिवाना करल बा। प्राधिकरण से जारी अनुमति पत्र के शर्त विपरीत काम करल निरीक्षण तथा जांच बुझ के क्रम में पुष्टि हुई पाछ दूरसंचार एन 2053 के दफा 47(1) बमोजिम ऊ सेवा प्रदायक जरिवाना करना निर्णय करल प्राधिकरण मंगलवार जारी करल प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख करल बा। प्राधिकरण के प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यल के अनुसार प्राधिकरण के निर्देशन नै मानल स्वीकृत प्याकेज अनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नै करैलक, तोक गैलक से ढेर शुल्क लिहल, स्वीकृत प्याकेज से फरक प्याकेज बनाकर बिक्री करल तथा ओसिन प्याकेज बारे सेवाग्राही तोक गैलक समयमा जानकारी नै देलक लगायत के विषयमा कार्यवाही कैगिलक हो। प्राधिकरण स्वीकृत करल इन्टरनेट के गति ओ प्याकेज अनुसार सेवा उपलब्ध नै करैलक तथा स्वीकृत दरबन्दी से ढेर शुल्क लेना कार्य स्वीकृत दर से ढेर शुल्क लेना कार्य उपभोक्ता के हित विपरीत हुईलक जनैती असीम गतिविधि नियंत्रण कर कार्यवाही कैगिलक प्रवक्ता आर्यल जानकारी देलबाट। प्राधिकरण के अनुसार सेवा प्रदायक शुल्क निर्धारण संबंधी निर्देशिका बमोजिम प्रस्तावित दर ओ लागू हुना मिति समेत उल्लेख कैक कम्तीमा 3 महिना आघ स्वीकृति के लाग पेश कर पर्ना व्यवस्था बा, तब हुन कु सेवा प्रदायक हुँक र ऊ व्यवस्था के पालना नै करल पागिल बा। जरिवाना पर्ना सेवा प्रदायकमा ब्रोडलिङ नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन प्रणाली, क्लासिक टेक प्रणाली, वेब सर्भर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रणाली, फाइबर वर्ल्ड कम्युनिकेशन प्रणाली, भायानेट कम्युनिकेशन लिमिटेड, एरोनेट प्रणाली, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाईफाई नेपाल प्राली, सीजी कम्युनिकेशन लिमिटेड, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन लिमिटेड, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेशन प्राली, पोखरा इन्टरनेट प्राली, टेक माइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड ओ सुबिसु लिमिटेड रहलबाट। नवरात्र के तेसरा दिन आज दशैं के घरमा वा पूजा कोठामा नौ दुर्गा मध्ये के तेस्रो चन्द्रघण्टा देवी के विधिपूर्वक पूजा आराधना कैजैटी बा। नव दुर्गा मध्ये के तेसरा देवी चन्द्रघण्टा हाथम चन्द्रमा के आकार हुईलक घंट लेना हुईलक मार निकाहर नाव चन्द्रघण्टा रह गैलक कनाप धेरनक पौराणिक एवं धर्मशास्त्र में उल्लेख कैगिल बा। देवी के पूजा आराधना से शक्ति प्राप्त हुईना हुईलक मार नवरात्र के अवसर में विशेष पूजा आराधना करना कैगिलक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठ के सेवानिवृत्त प्राध्यापक तोयानाथ नेपाल जानकारी देहलबाट। थारूभाषा खोज खबरमा कांग्रेस के 15 नियमित महाधिवेशन अन्तर्गत कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 के प्रदेश क ख ओ क्षेत्रीय अधिवेशन शुरू लगायत के खबर पलिबा सुन्तिरवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
9: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
10: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
9: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूर घूम जाए था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541426
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
12: कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
11: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
12: डाक्टर आउने दिन कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबार
11: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772
0: खोज खबरमा बचल खबर देउवा पक्षीय कांग्रेसके 15 नियमित महाधिवेशन अन्तर्गत कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 के प्रदेश क ख ओ क्षेत्रीय अधिवेशन हुल्बा अधिवेशन से क्षेत्रीय सभापति में धनंजय रिमाल चयन करगिलवा अस्तहे सचिव में छत्रमल्ल लक्ष्मीराम चौधरी सहसचिव में हंसराज रावल और धर्मा कुमारी चंद साहफे निर्विरोध निर्वाचित हुईलवाट याकर संघ और सदस्य हुक्रफे निर्विरोध निर्वाचित हुईलक निर्वाचन समिति जनाइलवा अस्तहे नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नंबर 1 प्रदेश ख के सभापति में ऋषि बीकर निर्वाचित हुईलवाट काली खुइलक अधिवेशन से उहाँ उग्र निर्वाचित हुईलक हुई ओ सरकार से धेरनक क्षेत्र संघ संबंधित 40 किस्म के तथ्यांक संकलन के काम आघ बढ़ेलबा राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय ई आघ शुरू होकर पूरा नहीं हुईलक और हाल के शुरू कैगिलक सहित के 3.5 दर्जन विषय ओ क्षेत्रमा तथ्यांक संकलन हुईति रहल जनाइलबा नीति ओ योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण मान्जिन आसिन तथ्यांक संकलन के लाग कार्यालय आपन सक्कु विषयगत शाखा ओ मातहत सक्रिय बनाइलबा कार्यालय सार्वजनिक करल मार्गदर्शन अनुसार तथ्यांक संकलन के कार्यक्रम अन्तर्गत गणना सर्वेक्षण अध्ययन ओ नियमित प्रकृति के काम रहलबा मार्गदर्शन अनुसार अब राष्ट्रीय आर्थिक गणना 2082 राष्ट्रीय औद्योगिक गणना 2083 और राष्ट्रीय जनगणना 2088 के लाग काम हुईती रहलबा ए मध्य चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक गणना के तथ्यांक प्रशोधन विश्लेषण तथा नतीजा प्रकाशन के काम हुईने बा यह समाचार संग संझेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबर ओराइल अंतिम जैटी जैटी खबर के मुख्य शीर्षक एक फेरा फेर से टीकापुर नगरपालिका के बाल विकास शिक्षक और नगर अनुदान शिक्षक के तलब वृद्धि शिक्षक हुकर खुशी नवरात्र के तेसरा दिन चंद्रघंटा देवी के विशेष पूजा आराधना कई जैटी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक फेर से सरल कांग्रेस सहमति लन्ना प्रयास विराटनगरमा आजसे मुख्यमन्त्री सम्मेलन ओ दूरसञ्चार प्राधिकरणके निर्देशन विपरीत इन्टरनेट सेवा बेचुया 14 कम्पनीहरू जरिवाना। लिट आबक थार भाषा खोज खबर रहे और समाचार 6 बजे के खोज खबर सुन सकने बाटी आबक खोज खबर से प्राविधिक संगरिया आकाश चौधरी धन्यवाद देती आबक खोज खबर से मई छपीलाल चौधरी फिर विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।

प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान उठिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौव झुनी देठ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविका मनेको छ वसाक बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चढाई क्लाक भक्खर गौरी ओर्लै जाइटल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व में गैल कोरा हुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर्क लैजाई लग्ल बर्किमार बटकोही बाजक हुँ

0: हिन्दूहरूको महान पर्व बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दाजु, विवाहको तयारी त शुरू भयो, तर पूजाका सामानहरू कहाँबाट ल्याउने होला?
2: त्यसको चिन्ता किन गर्थ्यौ बहिनी, मंगलेश्वरी पूजन भण्डार छ नि, त्यहीँबाट ल्याउला। विवाह तथा शुभ कार्यका लागि चाहिने पूजाका सम्पूर्ण सामग्री, माला, टीका, कलश, धूप दीपका साथै ज्योतिषी परामर्श तथा सम्पूर्ण कर्मकाण्ड लगायत आवश्यक सामग्रीहरू एकै ठाउँमा पाइन्छन्।
1: ओहो, त्यसो भए विवाहको पूजाको सामान खोज्दै धेरै पसल धाउनै नपर्ने रहेछ नि।
2: हो नि बहिनी, गुणस्तरीय सामान, उचित मूल्य र आवश्यक सामग्रीको राम्रो व्यवस्था सबैका लागि मंगलेश्वरी पूजन भण्डार।
1: त्यसो भए विवाहको सामान पनि मंगलेश्वरी पूजन भण्डारबाटै लिन जाउँ है।
2: अवश्य, तपाईँको शुभ कार्यलाई अझ मंगलमय बनाउन एक पटक आउनुहोस्।
3: मंगलेश्वरी पूजन भण्डार, टीकापुर 4 चौतारी नजिकै, संचालक छतराज उपाध्याय, सम्पर्क नम्बर 98-66-27-27-99।
4: दमकल बिग्रेको सूचना। टिकापुर नगरपालिकाको दमकल बिग्रेर मर्मतको लागि धनगढ़ी लगिएको र मर्मत भएर नआउँदासम्म दमकलका सेवाहरू प्रदान गर्न टिकापुर नगरपालिका असक्षम रहेको सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा जानकारी गराउँदछौ। टिकापुर नगरपालिका।
5: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेक्ल।
6: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू, मिलबो नि करत का कैन हो का।
5: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो न, कबू कहूँ घुम जाए त था पाए।
7: UPVC ब्रांड के मौका द्वार, पार्टीशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस, जमरा के उपार, टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
9: विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2082 पावन अवसरमा अछाम टेलर्स सबै उपभोक्ता आफन्तजनहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ।
10: आधुनिक डिजाइनका लेडिज, जेन्ट्स सुट, कोट, प्यान्ट, नेपाली दौरा सुरुवाल, सफारी सुट सिलाउनुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका रेडीमेड सर्ट, प्यान्ट, दौरा सुरुवाल, कोट पोसाकहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सेवा गर्ने मौका दिनुहोला।
9: संचालक मीन बहादुर थनाल, अछाम टेलर्स, बलभद्र चोक, टिकापुर। फोन नम्बर 98-585-53-333 र 98-483-23-475।
11: कार्यक्रम गोचाली अब से प्रत्येक हफ्ता के शुक्रवार 10:15 से करीब 11 बजे तक।

ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 को हार्दिक निमन्त्रणा। आदरणीय सज्जन वृन्द, वैदिक धर्म संस्कृति वेदाध्ययन तथा आध्यात्मिक चिन्तन प्रति श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ऋषिकवेद पारायण महायज्ञको पावन अवसरमा गरिमामय उपस्थिति तथा सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 कार्तिक 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म। आयोजक श्री मल्लिका विद्यापीठ, गुरूकुल टिकापुर, कैलाली।

बर्कीमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार क व्याख्या सहित का गायन मनैन गीत माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हो क्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो क्र प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौवल सुनि देथ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविका मानेको छ वसाक बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाइक लाग भक्खर गौडी ओर्लै जाइ दल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व म गैल कौराहुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर लैजाइ लग्ल बर्कीमार बटकोही बात।

0: होंडा सँगै यो दशैंमा आशाको शुरुआत गरौं। स्क्र्याच कुपन मार्फत 1,00,000 सम्म जित्ने मौका। चुज एनीवन स्कीम अन्तर्गत थप रु 10,000 सम्मको स्क्र्याच कुपन, 7 वर्षसम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्षसम्म एएमसी र होंडा साथ अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होंडा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: हिन्दू भगवान के महान पर्व बर्खा दशैं ओ शुभ दीपावली 2083 साल के पावन अवसर में सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दादू भैया ओ दीदी बहिया हुकनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती रदगैया झोला उद्योग में तमान मेरके झोला सुपथ मूल्य में पा जाइट जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग लगेज बैग फाइल बैग लगायत के तमान डिजाइन के बैग अर्डर करल अनुसार बना जाइट ओ पुरान बिगड़ल झोला मरम्मत कर जाइट एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: रदगैया झोला उद्योग मुनवर रोड टीकापुर कैलाली संचालक राम प्रसाद चौधरी।
1: ए बहिनी, यसपालीको दशैं तिहारमा राम्रो दौरा सुरुवाल लगाउन मन थियो, कहाँ पाइन्छ होला?
2: छ नि दाजु, हाम्रै टीकापुरमा ओम शान्ति द रेमन्ड सुट सप सेन्टर।
1: हो र बहिनी, त्यहाँ अरू के पाइन्छ?
2: त्यहाँ त दौरा सुरुवाल, कोट, सर्ट प्यान्ट, रेडीमेड दुल्हाको सेट, थान कपडा पनि पाइन्छ।
1: त्यसो भए आजै जानु पर्यो र दौरा सुरुवाल सिलाउनु पर्यो।
2: ओम शान्ति द रेमन्ड सुट सप सेन्टर, टीकापुर 1 धारा मार्गको चौबाटो नेर, संचालक रमेश परियार, सम्पर्क नम्बर 98 43 91

0: बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसर में सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक तथा देश विदेश में रहनु भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि र उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एसएआर आर्ट एण्ड फिल्म सेन्टर में फोटो फोटोकपी फोटोफ्रेम छाप विवाह कार्ड माया को चिन्ह फ्ल्याग जस्ता विभिन्न प्रकार का ग्राफिक डिजाइनिंग र प्रिंटिंग जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ।
1: एसएआर आर्ट्स एण्ड फिल्म सेन्टर जानकी गाउँपालिका एक दुर्गौली स्वास्थ्य चौकी को सीधा अगाड़ी। संचालक राजेश चौधरी। फोन नंबर 9848 9920 00।
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
3: अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।

बर्किमार बट को ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बट को ही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक होकर चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक होकर प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौवल जुनी देठ सक्कु प्राणी होकर आपन जीविका मा देख छ ओसाका बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरुन चहाइक्लाक भक्खर गौरी ओरले जाइटल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व मा गैल कोराहुक नक्सेना होकर सक्कु गैया होकर खेदर्क लैजाइ लग्ला बर्किमार बटकोही बाचक हुँ र

0: angelic fragrance.
1: ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 को हार्दिक निमन्त्रणा। आदरणीय सज्जन वृन्द, वैदिक धर्म संस्कृति वेदाध्ययन तथा आध्यात्मिक चिन्तन प्रति श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ऋषिकवेद पारायण महायज्ञको पावन अवसरमा गरिमामय उपस्थिति तथा सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 कार्तिक 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म आयोजक श्री मल्लिका विद्यापीठ गुरूकुल टिकापुर कैलाली।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: टीकापुर नगरपालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम संबंधी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
0: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
6: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
0: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
6: कहाँ हुनु भाइ टीकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
0: अब त म ढुक्क
7: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
6: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टीकापुर कैलाली

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: डाइबेट भूख लाग्ता खाजा बाँकी नै ए काकी फे आइल बाटी राम राम काकी
3: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारी हो स्याकल बाजे आप भली भुआस कर दिया परल है समय में भुआस कर देला से आपन जिम्मेवारी फे वरिना और जनक बात फे सुननी पड़ना
4: आ दिदी फे ऊ बेला आपन कट्रा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर देखा मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरे नी चाहू दीदी मई चाह ई बाल विवाह कर नी चाहू ई बाल विवाह नी करन दीदी।
5: शारीरिक मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से डाई वो बच्चा दुनू के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत ऊ हिंसा के शिकार बन सकत उही है विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई से थीस ऊ रोजगार फिर नहीं पाए ओ गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन कराई से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकत ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता
3: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश।
5: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
6: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
7: यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सयौं रेडियो हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।